0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए

0: तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अम्बाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR

0: मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी तो परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे।

0: केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कंगंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है ओर्मूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़, राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक, दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात

0: প্রতিটো ঘরের বাণী আকাশবাণী, সকলোরে হৃদয়ের বাণী আকাশবাণী। আমি আগবাড়িছো আপোনালোকৰ সৈতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গঢ়িবলৈ। মাত্র এটা ক্লিকতে আমার কেন্দ্রবোৰৰ অনুষ্ঠান লাইভ, সংগীত, নাটক, খেল আর প্রতিটো পলৰ নির্ভরযোগ্য বাতৰিৰ সৈতে আমার ওয়েবসাইট akashbani.gov.in। নতুন ভারত, নতুন আকাশবাণী। আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক, অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: আওয়ার ভয়েস গেটস ইউ হার্ড এভরিওয়্যার।
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ করিবলৈ আর সরকারি আসনির বিষয়ে অবগত করাবলৈ আমার ফোন নম্বরটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপনার সৈতে।
2: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতেই 12 বজাত হিন্দীত, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
4: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
3: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत

प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्यारे भाइयों, गीत संगीत के सफर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं जयश्री। और सबसे पहले आइए आपको जानकारी देते रहे आज के कार्यक्रम सूची की। अभी कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर।

समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम सबरंग 1:10 पर। कार्यक्रम तरन्नुम का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 मुद्दे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीते का 2:30 पर। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी जानकारी आज के प्रसारण सूची की।

अब प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सनी निगम की आवाज में साथिया फिल्म से। बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सजाया है AR रहमान।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं भक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में गीत फिल्म जाग उठा इंसान। अब आइए सुनते हैं अगला गीत जय संतोषी माँ फिल्म से उषा मंगेशकर की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आपके साथ हूँ मैं जयश्री।

सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि आप हमारे प्रसारण अब से लेकर 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है चित्रा की आवाज़ में तुम बिन फिल्म से। बोल है फैज अनवर के और संगीत है निखिल विनय का।

सब रंग कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मासूम फिल्म संगीत भूपिंदर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सजाया है आरदेव।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आप सुन रहे हैं मिली जुली गीतों का कार्यक्रम सबरंग। अभी आपने सुना फना फिल्म से सनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल की आवाजों में गीत। बोल हैं प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित के। अब आइए सुनते हैं अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दमन फिल्म से। बोल हैं माया गोविंद के और संगीत भूपेन हजूरिका के।

सब रंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में राम तेरी गंगा मेले फिल्म से गीत। अब आइए सुनते हैं अंतिम गीत हेमलता की आवाज में, आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रिक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। अभी आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में गुलफाम एल्बम से ये गजल। अब आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में घूंघट एल्बम से ये गजल।

0: किलोमीटर का है, हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है, उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई

0: विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सैनिक भाइयों, समाचार के बाद एक बार फिर आप सभी का आज के प्रसारण में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सैनिक भाइयों, अब प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में, अनुराग फिल्म से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है SD बर्मन का।

गीतिका कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में आयाश फिल्म से गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत रविंद्र जैन का।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। अभी आपने सुना हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिसान के संगीत से सजे बेटी बेटे फिल्म से गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में जुर्माना फिल्म से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरती बर्मन ने।

गीतिका कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जिद्दी फिल्म से गीत। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है एस डी बर्मन का।

इसमें

गीतिका कार्यक्रम में अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में फर्स्ट फिल्म से गीत बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब आइए सुनते हैं अंतिम गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में बॉबी फिल्म से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं।
1: सैनिक भाइयों, इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम गीतिका। अभी वक्त हो चुका है आज के प्रसारण के समापन का। कल फिर होगी मुलाकात कुछ सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए जय श्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन क्या हो जब हर कदम दर्द देने लगे। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। जरा सोचिए, सुबह बिस्तर से पहला कदम रखने से लेकर दिन भर की भागदौड़ तक हमारे पैर लगातार हमारा साथ निभाते हैं, लेकिन क्या हम भी उनका उतना ही ख्याल रखते हैं। अक्सर पैरों की छोटी मोटी तकलीफ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और यहीं से शुरू हो सकती है बड़ी परेशानी। एड़ी में दर्द, पैरों में सूजन, तलवों में जलन, कौन फटी एड़ियां या नाखूनों की समस्या, सुनने में ये परेशानियां आम लग सकती हैं, लेकिन कई बार ये हमारी सेहत से जुड़े दूसरे संकेत भी दे सकती हैं। यही विषय है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, कॉमन फुट प्रॉब्लम्स, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342108 02 342108 02। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कॉमन फ्रूट प्रॉब्लम्स पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर पैर दर्द करे तो हम कहते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हर दर्द आम है? पैरों से जुड़ी आम समस्याएं आखिर कौन कौन सी हैं?
2: जी, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि अगर पैरों में दर्द हो तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये अक्सर सब लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा कुछ केसेस में तो ठीक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 50 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स हैं या 60 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स हैं तो उनमें ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनकी मसल्स एज के हिसाब से वीक हो जाती हैं, उनकी बॉडी का भार उतना नहीं ले पाती हैं, तो वॉकिंग के टाइम पे स्टैंड

0: हाँ, एड़ी में दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, और वो आते भी हैं, मतलब ज़्यादा स्टैंडिंग या ज़्यादा वॉकिंग की वजह से आ जाते हैं। तो अक्सर जो एड़ी में दर्द होते हैं वो जैसे हील स्पर हो गया, प्लांटर फेसाइटिस हो गया, एक्लिस टेंडन हो गया, तो कई सारे टाइप के होते हैं। वो अक्सर रेस्ट के हिसाब से चले भी जाते हैं और कभी कभी वो बहुत सीवियर बढ़ भी जाते हैं।
1: तो जैसे कि अभी आपने कहा प्लांटर फेसाइटिस और हील्स पर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और है क्या?
0: प्लांटर फेसाइटिस और हील स्पर में काफ़ी डिफरेंस है, और लोग ये मुझसे पूछते भी हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं कि हमें प्लांटर फेसाइटिस है हील स्पर है, वो कंफ्यूज रहते हैं ऐसे केसेस में। तो मैं बता दूं कि प्लांटर फेसाइटिस एक ऐसा प्लांटर फेसिया है जो हमारे हील की तरफ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और फिंगर की तरफ वो रन करता है। तो प्लांटर फेसिया के केस में होता है कि जो फेसिया होता है हमारा थिक हो जाता है, और जिसकी वजह से कि हमें जब भी हम पैर वजन डालते हैं एड़ी पे तो हमें पेनफुल होता है। और इसी के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा हील स्पर का। हील स्पर के केस में क्या होता है, जो हमारी एड़ी की बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो कैल्केनियल बोन होती है, तो उसका बढ़ जाना, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो अक्सर हील स्पर के केस में पर्सन जब सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम पे वो पेन फील करते हैं। इनिशियल के 5-6 स्टेप या 10 स्टेप उनके पेनफुल होते हैं, आफ्टर 10 स्टेप वो फिर पेन उनका अवॉइड हो जाता है। तो उनको लगता है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, मुझे पेन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो फिर रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे के लिए, वो फिर पेन वैसे ही आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लांटर फेसाइटिस में पूरा दिन आप पेन फील करेंगे, हील स्पर के केस में सिर्फ मॉर्निंग में। तो उसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं।
1: तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है?
0: हाँ, ये बिल्कुल सही है मैम। इसका ट्रीटमेंट पहले तो हमारे यहाँ इंडिया में सब लोग होम रेमेडी लेते हैं ज़्यादातर, है ना। तो जब होम रेमेडी से काम नहीं बनता है तब वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने पास में कोई भी अच्छा डॉक्टर, जो पोडाइट्रिस्ट हो या कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो, उनके पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे कितने टाइम से पेन आ रहा है और ये किस चीज़ का पेन हो सकता है। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जनरली तो सबसे पहले हमें अपनी फुटवेयर वगैरह ही चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेशर की वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं और उससे ही हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं।
1: कई बार होता है जो डायबिटिक होते हैं उनको भी पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है या पैर सुन्न हो जाते हैं, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें?
0: डायबिटिक के केसों में तो ये बहुत आम है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें थोड़ा भी पेन लग रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपने पास में किसी भी, और हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए कहीं हमारे पैरों में स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, या हमारे नेल्स ब्लैक या ब्लू तो नहीं पड़ रहे हैं, या हमारी जो फुट की स्किन है वो ब्लू तो नहीं हो रही है, ब्लैक तो नहीं हो रही है, और कोई भी स्कार या कोई भी ब्लिस्टर हमारे पैर में अगर है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी स्कार या अल्सर अगर 24 से 48 घंटे में उसका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है तो हमें इमिडिएटली किसी भी अपने पास के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कंसल्ट करना।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं पैरों की आम समस्याओं पर। इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: चार कदम बस चल दो ना साथ मेरे। ये गाना सुनकर वैसे ही चलने का मन हो गया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हम अपने पैरों का ध्यान रखें। हम बात कर रहे थे कि हम डायबिटीज़ में कैसे अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ का पैरों पर क्या असर पड़ता है, और उनके लिए एक छोटी सी फुट इंजरी भी इतनी डेंजरस क्यों हो जाती है डायबिटिक में?
1: डायबिटिक के केस में मैम ऐसा होता है कि कोई भी अगर फुट इंजरी हुई है तो इसको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। उसी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसीलिए हमें अपने जब भी अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको काफ़ी ध्यान से पैरों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एंटायर बॉडी वेट हमारे फुट पे होता है। और जैसे ही डायबिटिक के केस में अगर वॉकिंग भी थोड़ी हम रोकते हैं या अगर पर्सन रेस्ट ले लेता है तो उस केस में उनके लिए काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर छोटा सा भी कोई अल्सर या कोई ब्लिस्टर या कोई चोट भी लगी है तो उसका बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना होता है कि यह हमारा हीलिंग स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। 24 से 48 घंटे का टाइम हम मानते हैं कि अगर हीलिंग स्टार्ट हो जाता है उस पीरियड में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर हमें वो डॉक्टर के पास में, अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डेली रूटीन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए डेली रूटीन में?
1: जी बिल्कुल, ऐसा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने पैरों को डेली की दिन में 2 से 3 बार अगर पॉसिबल है तो वॉश करना चाहिए और कॉटन टॉवल से उनको क्लीन करना चाहिए। और स्पेशली ध्यान रखें कि कोई भी स्कार या कोई भी ब्लिस्टर वहाँ पे नहीं है होना चाहिए। और एक नरम फुटवेयर पहनना चाहिए, ना कि हार्ड फुटवेयर, टाइट तो बिल्कुल ना हो उनके लिए। और उनकी वॉकिंग एक लिमिटेड होनी चाहिए अगर किसी को सीवियर डायबिटीज़ है तो। जी
0: अच्छा, कई बार कहते हैं कि जो डायबिटिक होते हैं तो उनको बेयर फुट चलने में भी प्रॉब्लम होती है।
1: हाँ, ऐसा होता है क्योंकि डायबिटिक के केस में इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहता है पैरों में और इंजरी के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सकता है कवर शूज़ या सॉफ्ट फुटवेयर पहन के वॉक करो, ना कि वेयर फुट। अगर वेयर फुट वो मतलब वॉक करते हैं तो इंजरी होने के रिक्स काफ़ी हो जाते हैं।
0: या फिर सॉक्स भी, अगर घर में या कहीं मंदिर वगैरह में जा रहे हैं तो सॉक्स भी पहन सकते
1: सॉक्स
0: हैं,
1: पहन सकते हैं, उन्हें कॉटन सॉक्स होते हैं और डायबिटिक सॉक्स भी आते हैं, वो भी पहन
0: वो
1: सकते हैं,
0: डिफरेंट होते
1: वो
0: हैं।
1: डिफरेंट होते हैं।
0: क्या डिफरेंस होता है?
1: डायबिटिक सॉक्स में क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं, उनके अंदर थोड़ा कंप्रेशन होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से टूवर्ड्स हार्ट्स ईजिली फ्लो हो पाए।
0: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं उमेश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। डॉक्टर साहब को नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार सर,
0: जी बताइए क्या
2: डॉक्टर
0: प्रश्न
2: साहब।
0: है आपका?
2: डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में जलन रहती है
1: जी,
2: और तेल की मालिश करने से थोड़ा आराम लग जाता था पहले, अब नहीं लगता। ये किस कारण होती है, इसका क्या इलाज है, कृपया प्लीज बताइए।
1: देखिए, पैरों में जलन एक आम समस्या है और काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान हैं, है ना। और ये इसमें जनरली जो 30 से 35 साल के ऊपर के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये जनरली इसलिए हो जाती है कि जो पर्सन के लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग वॉकिंग होता है तो उन लोगों में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस केसेस में जैसे सर ने बताया है कि सरसों के तेल की मालिश करते हैं, तो मालिश तो ठीक है लेकिन उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उनको अपने पास में, नज़दीकी पास में एक पोडाइट्रिस्ट के पास जाके अपनी पूरी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत है, सो दैट कि वो उनका ट्रीटमेंट प्लान कर सके, तब उनको रिलीफ मिलेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी मालिश से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ये इसका प्रॉपर इलाज नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि जलन की उन्होंने बात करी तो एक मैसेज भी हमारे पास, ये भी यही पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, आई एम अमर रमेश कुमार खत्री चानेसर गोद कराची से। इनका क्वेश्चन है, मेरे फुट में गर्मी के मौसम में जलन रहती है, इसका क्या रीज़न है और क्या ट्रीटमेंट है, बता दीजिए, नमस्कार धन्यवाद। इनके भी यही है, लेकिन कह रहे हैं गर्मी के मौसम में।
1: इनका भी सेम, गर्मी के मौसम में क्या होता है, स्वेटनिंग ज़्यादा होती है और जो पर्सन होते हैं वो शूज़ ज़्यादा कैरी करते हैं। तो जब हमने बताया अभी कि ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, अगर हम ज़्यादा टाइम तक स्टैंड कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक वॉक कर रहे हैं, तो स्वेटनिंग होती है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि हम मालिश करा लें या हम रेस्ट कर लें। बर्निंग सेंसेशन इसको बोलते हैं जनरली, जो प्लांटर से हमारे फुट के नीचे आ जाती है, तो सबसे पहले तो इसका इलाज यही है कि आप अपने पोडाइट्रिस्ट को जाके ये प्रॉब्लम बताएं, वो आपके फुट के अकॉर्डिंग एक इंसॉल बना के देंगे जिसे हम कस्टमाइज इंसॉल ऑर्थोटिक्स बोलते हैं, तो शूज़ के अंदर डाल के पहने जिससे कि जो मसल्स की हीट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसके अंदर मेडिकेटेड मटेरियल्स होते हैं जो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको फुट में जलन है उनके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है ट्रीटमेंट लेना, और बड़े आराम से वो ठीक हो सकते हैं। पर मसाज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है इस टाइप के पेशेंट्स के लिए अपने पैर के हिसाब से अपना एक इंसॉल बनाए, उसको शूज़ के अंदर डाल के पहने, वो स्वेटनिंग भी ऑब्जर्व करेगा और बर्निंग को भी कम करेगा।
0: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मेरा नाम अब्दुल मुख्तियार है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, खजूरी से।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी मेरा सवाल यही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जी मेरी मम्मी के ना जोड़ों में और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, हमेशा रहता है, सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में कम हो जाता है, लेकिन इनका दर्द कभी खत्म नहीं होता। इसका क्या, आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तब ये डायबिटीज हो सकती है क्या?
1: नहीं, ये जो आपकी समस्या है वो डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, ये समस्या है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसे हम गठिया बा बोलते हैं, जो हमारे हाथ के पैरों की उंगलियों में दर्द होता है या हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि हमारे मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, सर्दियों में हम वॉक कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, हम अक्सर गर्माहट में रहना पसंद करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं तो मूवमेंट भी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये पेन आना, दर्द होना, ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा आएगा। तो ऐसे एक चीज़ को ठीक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, आपके आसपास में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे आप उनसे जाके कंसल्ट करें, तो वो आपके इस बारे में ज़रूर मदद कर सकते हैं। थैंक यू
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपने बोला था न्यूरोपैथी, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है और पैरों को कैसे प्रभावित करती है?
1: हमने अभी इसके बारे में हमने आपको बताया भी कि ये डायबिटीज़ से रिलेटेड है, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है डायबिटिक पेशेंट्स को कि भाई पैरों में ज़्यादा सूजन नहीं आनी चाहिए, सेंसेशन का ध्यान रखना होता है। इस केसेस में क्या होता है, अक्सर पेशेंट का सेंसेशन कम हो जाता है, उनको फील होना, टचिंग फील होना कम हो जाता है या ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सभी डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए कि वो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, अगर सूजन आ रही है या आपको कुछ भी ऐसा ठंडे या गर्म का एहसास नहीं हो रहा है या आपका सुन्नपन बढ़ रहा है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उनको प्रॉपर जाके अपनी हिस्ट्री बताएं और इस बारे में उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर फुट में अल्सर आ रहा है या वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप पोडाइट्रिस्ट के पास जाइए।
0: जैसे कि आप डायबिटिक्स में भी आपने बताया कि पैरों की कैसे करने, कौन भी एक आम समस्या है पैरों की?
1: मैम कौन तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोग इस चीज़ से मुझे लगता है काफ़ी परेशान हैं, और हमने पिछले एक साल में काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स कौन के देखे हैं।
0: तो जैसे कौन और वॉट, इसमें भी लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, क्या डिफरेंस है?
1: कन्फ्यूज रहते हैं। वॉट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवर प्रेशर की वजह से हल्का हल्का हमारा एक दाना बनने लगता है, हार्ड स्किन होने लगती है, तो उसको हम वॉट बोलते हैं, और वही ओवर प्रेशर कंटिन्यूस रहता है तो वो कॉर्न में कन्वर्ट होता है, जो कि काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो पेनफुल हो जाता है तो हम उसे कॉर्न बोलते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि हमने ऑपरेट कराया है या हम 3-4 बार इसको ऑपरेट करा चुके हैं, पर ये कॉर्न बार बार आ जाता है, तो वो बार बार आ जाएगा, वो स्वाभाविक है आना, क्योंकि वहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा प्रेशर नहीं हटा है, जब तक वो प्रेशर उस एरिया से नहीं हटेगा तो कॉर्न ठीक नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो उसके लिए उस प्रेशर को हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो हट सकता है तभी तब आप एक प्रॉपर ऑर्थोटिक्स अपने शूज़ के अंदर पहने, अपने पोडाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें, वो चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे कितना प्रेशर आ रहा है और हमें कितना प्रेशर वहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है जी, तब वो हमारा कॉर्न्स बड़े आसानी से ठीक हो जाएगा।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरे फुट में थंब के नीचे बोन बाहर की साइड आ गई है जिससे ब्यूनियन बोलते हैं, 1 मंथ बहुत दर्द रहा, इससे पहले विंटर में मैंने पूरे टाइम बंद शूज़ पहने थे, क्या ये उस वजह से हुआ? अब आराम है, हड्डी बाहर आ गई है, मुझे कैसे फुटवेयर यूज़ करने चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन इनका यह है, मेरी सिस्टर 72 साल की है, पैर की फिंगर सुन हो जाती है, क्या करें? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ।
1: जी, ये उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बुनियन का। अक्सर ऐसे ओल्डर एज के केस में ऐसा होता है, यंग एज में भी बुनियन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बुनियन की प्रॉब्लम आने का कारण है कि हमारे जो अंगूठा है आगे वाला, उस पर ओवर प्रेशर आता है। जैसे अंगूठे पे वजन ज़्यादा आएगा तो हमारा अंगूठा डेविएट होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा या बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अक्सर बुनियन के केस में मुड़ता है और हमारी हड्डी बाहर निकलने लगती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे जो पैर है वो सीधे नहों के अंदर की तरफ फॉल करते हैं, जो हमारा आर्च है वो लो हो जाता है या कोलेप्स हो जाता है, समटाइम फ्लैट भी हो सकता है, जिसे हम पट्ट पैर बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में वो बुनियन की प्रॉब्लम बन जाती है। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप एक तो कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स जितना हो सकता है अपने इंसोल पहने, और शूज़ किस टाइप का पहनना है, शूज़ आपने आगे से जो टो बॉक्स एरिया, जो आगे का पंजे वाला एरिया बोलता है, वो टो बॉक्स एरिया होता है, उसको ब्रॉड होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो अपर होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट कि उस जो बोन उनकी प्रोट्रूड हो गई है उस पर ओवर प्रेशर ना आए। तो नॉर्मल प्रेशर आएगा तो वो पेन फ्री वॉक कर सकते हैं। इस चीज़ का उनको खास तौर से ध्यान रखना है, और उनको लेसेस वाले शूज़ पहनने हैं तो अपने अकॉर्डिंग टाइट और लूज कर सकें।
0: तो लेसेस विदाउट लेसेस शूज़ में भी डिफरेंस रहता है?
1: काफ़ी डिफरेंस होता है। विदाउट लेसेस शूज़ आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है
0: जी,
1: है ना, लेसेस
0: इजी टू वेयर रहते हैं,
1: इजी टू वेयर होते हैं, लेकिन वो एक महीने दो महीने पहनने के बाद काफ़ी लूज हो जाते हैं, फ्लेक्सीबल हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रिप नहीं रहती है। हमारे पैर को तो ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, अगर ग्रिप नहीं होगी तो हमारा पैर अंदर की तरफ भी गिर सकता है और बाहर की तरफ भी गिरता है। तो 99% चांसेस होते हैं कि हमारे पैर अंदर ही फॉल करता है, और उसी की वजह से हमारा फ्लैटनेस बढ़ती है पैरों में, उसी की वजह से हमारे बुनियन बनते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन तो यही होता है कि आप जितना हो सकता है कि आप फीते वाले शूज़ पहने, कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग टाइट और लूज़ कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल फैशन के अकॉर्डिंग हम शूज़ में भी है ना, उसमें एक तो आते हैं सॉफ्ट फोम के, एक आते हैं कैनवस, तो हमें उसमें भी किस तरह की सोल लेनी चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जनरली लोग सोचते हैं कि हम बहुत सॉफ्ट कुशन वाला शूज़ लें ताकि आराम रहेगा चलने में, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि आराम तो मिलता है जब स्टार्टिंग में लेते हैं और वॉक भी काफ़ी करते हैं। जहां जैसे ही 2-3 महीने 4 महीने निकलते हैं तो उनको और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्ट वाला शूज़ लिया है वो ओवर प्रेशर की वजह से वो दबने लगता है। जब सॉफ्ट है तो दबेगा, उसकी टेंडेंसी है, तो जब दबेगा तो नी पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हमारे नी पेन काफ़ी कॉमन होता है ऐसे केसेस में, तो जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट वाले शूज़ आते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप सॉफ्ट भी मत पहनिए, आप हार्ड भी मत पहनिए, आप सेमी रिजिड शूज़ पहनिए, ना सॉफ्ट हो ना हार्ड हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो हमारे आर्च के पास जो पोर्शन होता है ना, वो वाइड होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ताकि फुट का जो सरफेस एरिया है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी अच्छा हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्ट सपोर्ट के चक्कर में, अच्छा सूज के चक्कर में,
0: फैशन
1: वो एरिया ही नैरो कर देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशूज है। और मेरे हिसाब से लोगों को इस चीज़ के थोड़ा ध्यान रख के शूज परचेज करना चाहिए,
0: मतलब हमें सब चीज़ें देखकर फिर अपना शूज सेलेक्ट करना चाहिए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। अगर इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आपके आसपास में पॉडियाट्रिस्ट होते हैं डॉक्टर
0: जी,
1: आप उनको जाके प्रॉपर अपना पैर दिखा के कंसल्ट करके आप पूछ सकते हैं कि भाई हमें किस टाइप का शूज़ हमारे फुट के लिए सही रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, एक बार आप दोबारा लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। उन्होंने जिनका हमारे पास मैसेज था, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी सिस्टर है 72 साल की, उसकी पैर की फिंगर सुन हो जाती है, वो क्या करें?
1: हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है कि पैरों में नमनेस की प्रॉब्लम आती है, उंगलियों में नमनेस की प्रॉब्लम आती है, तो जो एज के अकॉर्डिंग हमारी मसल्स वीक होती हैं, तो ये नमनेस हमारी फिंगर से नहीं स्टार्ट होती है, हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं उनकी कमर में कोई ना कोई नर्व उनकी सप्रेस हो रखी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नमनेस फील करती हैं, तो उनको न्यूरो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। पैरों के लिए इतना वो परेशान ना हो, वो वहाँ से ठीक हो जाएगी।
0: जैसे कि हम डायबिटीज़ पे अभी बात कर रहे थे, तो एक मैसेज भी आया हमारे पास, वो लिखते हैं कसगंज से, मास्टर राधे श्याम साखिया, वो लिखते हैं नमस्कार जी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी तलवों में सुनपन और जलन है, घर से स्कूल जाकर वापस आने में पैरों में सूजन आ जाती है और रेस्ट करने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए?
1: ये पैरों की सूजन की समस्या बड़ी कॉमन है, और हम ये सोचते हैं कि हमारे पैरों में ही कोई प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पैरों में ही प्रॉब्लम हो। आपने कहा कि आप जब रेस्ट करते हैं तो आपकी वो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका वाटर इनटेक कम हो रहा है, हम पानी कम पी रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो थिक हो जाता है और एंटी ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाता है। हमारा जो रक्त है, जो खून है, वो पैरों से हमारे हृदय की तरफ वापस आता है और वैसे ही नीचे जाता है। तो थिक होने की वजह से उतना ब्लड वेसल से वो पास नहीं हो पाता है, जैसे कि थोड़े टाइम स्टैंडिंग में, थोड़ी वॉकिंग में लोगों के पैर सूज जाते हैं। तो वो अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, और इसके साथ में उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये किडनी की भी प्रॉब्लम, लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी,
0: बातें हम और भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
4: ये रातें, ये मौसम।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं कॉमन फूड प्रॉब्लम्स की। तो हमारे पास एक मैसेज है डॉक्टर साहब, वो लिख रहे हैं, हेलो माय नेम इज़ ज्योति, माय एज इज़ 40। मुझे 2 साल से आर्थराइटिस बताया, नी में इंजरी बताई और 2 साल से दवाई खा रही हूँ, कोई रिलीफ नहीं है। अब मैं फिजियोथेरेपी ले रही हूँ 2 महीने से, अब 19-20% आराम मिला है। फिजियोथेरेपी से 100% रिजल्ट आएगा, प्लीज़ बताएं, कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ।
2: हाँ, ये इनका अच्छा क्वेश्चन है। लोग बाग काफ़ी परेशान है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से। नी में पेन बहुत कॉमन है और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टर आजकल तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 30 या 35 साल से ही लोगों में मैं काफ़ी देखता हूँ नी पेन की समस्या आ रही है। पर ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें ग्रेड होता है। अगर ग्रेड 2nd या ग्रेड 3rd है तो मेडिसिन का इम्पैक्ट इतना नहीं आता है। जो अगर कोई भी पेशेंट नी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उनको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक, अपना एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे रखना है उनको, और दूसरा पॉइंट कि अपने फुटवेयर में चेंजेस करने हैं। अपने फुटवेयर में अपने पैरों के लिए एक इंसोल बनवाएं जिसमें लेटरल वेज लगवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जहाँ से गैप रिड्यूस होता है वो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और हमें वॉकिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन तो हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते और रेगुलर एक्सरसाइज करें, यही इसका ट्रीटमेंट है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको पता है कि नी रिप्लेसमेंट आजकल तो बहुत ही अच्छा और रोबोटिक तरीके से होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो आसानी से करा सकते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है अनीता, ये लिखती है, माई एज इज़ 47, आई एम ए हेल्दी फीमेल, आई एम अ रेगुलर हाइकर ट्रैकर, What is the ideal weight and sole type of shoes that should be worn as trekking shoes are very heavy and hard?
2: हाँ, ट्रैकिंग वालों को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको हाई एंकल शूज़ कैरी करना होता है और वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो अक्सर इन लोगों को क्या करना है, क्योंकि ट्रैकिंग में हैवी शूज़ ही चाहिए होता है, लाइट वेट शूज़ इतना कम्फर्टेबल रहेगा नहीं, ना ही इतना वो प्रेशर टॉलरेट कर पाता है। तो इन लोगों को एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने पैर के हिसाब से एक इंसोल बनवाना चाहिए, तो कि हम प्रेशर को शिफ्ट कर सकें। और ऐसे केसेस में इनको ये भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा हल्का, अगर लाइट वेट शूज़ अगर ये कैरी कर सकते हैं, कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो लाइट वेट शूज़ करते हैं, तो वो इनको परचेज करना चाहिए मेरे हिसाब से।
1: तो जो ट्रैकिंग करते हैं, कुछ स्पेशल फुटकेयर है इनके लिए, क्योंकि इतनी ट्रैकिंग करने के बाद आई थिंक
2: ट्रैकिंग में एंकल इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको हाई एंकल शूज़ दिया जाता है। तो लिटिल वेट थोड़ा हैवियर होता है, पर ऐसे केसेस में इनको अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अच्छी करनी चाहिए सो दैट कि वो उतना वेट लिफ्ट कर सकें। और उसके अंदर एक जो मैंने बताया ऑर्थोसिस, कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स ये पहनेंगे तो काफ़ी काफ़ी बेहतर रहेगा इनके लिए।
1: अगर जैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, कभी एकदम मेजर कुछ फुट में प्रॉब्लम हो जाए या एंकल ट्विस्ट हो जाए तो इमिडिएटली कुछ कर सकते हैं?
2: हाँ, सभी ट्रैकर्स जो भी ट्रैकिंग करने जाते हैं वो अपना साथ में रेमेडी ज़रूर रखते हैं, क्रैप बैंडेज या अदर टाइप ऑफ मेडिसिन भी रखते हैं वो, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, जो छोटा सा आता है हम अपने साथ कैरी करते हैं ट्रैकिंग में। तो वो सब लोग नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए,
1: जो रेगुलर बेसिस पर जाते हैं वो तो रखते होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो नहीं रखते, उन्हें रखना चाहिए।
2: हाँ, उन्हें रखना चाहिए। लास्ट टाइम मैं भी गया था तो मैंने भी ये चीज़ रखी थी वो ज़रूरी हो जाती है जी।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: ये तो ऐसे है, 7-8 साल से पार्किंसंस की बीमारी।

0: और शुगर में भी 500-600 ऐसी आती है। तो ये डॉक्टर साहब से और
1: नहीं, इनका क्वेश्चन है कि पार्किंसंस की इनको प्रॉब्लम आ रही है। हमें आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो समझ में आए हैं वो पार्किंसन से रिलेटेड हैं। तो पार्किंसन के केस में ऐसा होता है, ये वो बीमारी ही ऐसी है कि जनरली एक पर्टिकुलर एज आफ्टर 50-60 के बाद ही ये होती है, और मसल्स को धीरे धीरे धीरे धीरे वीक कर देती है, जिसमें कि वॉकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होने लगती है, हमारे हाथ पैर चलते हुए कांपने लगते हैं। तो उसके लिए तो एक ही रेमेडी होती है कि जितना हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करें, खुद से करें या अपने आसपास में किसी कोई फिजियो डॉक्टर है तो आप उनसे एक्सरसाइज करवाएं, पर एक्सरसाइज ही उसकी एक रेमेडी है। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो हम मसल्स को वीक होने से रोक सकते हैं।
2: एक मैसेज है हमारे पास, ये है अनीता, ये लिखती हैं, ये अनीता का तो हमने मैसेज ले लिया था। एक और मैसेज है, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब शूज़ कौन से पहनने चाहिए, लेस कम लेस वाले या बिगर लेस वाले, कैसे फुट होने चाहिए और नंबर से बड़ा शूज़ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अमर रमेश कुमार खत्री चानेसर गोट कराची से।
1: हाँ, ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी हमने बताया अभी कि हमें शूज़ लेसेस वाले पहनने चाहिए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि हमें अपने पैर के साइज़ से एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए ये सेम साइज़ का पहनना चाहिए। जी, अगर आपको फुट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टोज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सेम साइज़ में या टाइट शूज़ नहीं पहनना चाहिए। उस केस में हमें एक नंबर बड़ा शूज़ पहनना चाहिए। कुछ पर्सन हाईली एक्टिव होते हैं या कुछ एथलीट होते हैं तो उनको सेम साइज़ का शूज़ पहनना चाहिए। तो फुट की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है कि पैर में क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमें उस पे डिसीजन लेना होता है कि हमें एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए या सेम साइज़ का पहनना चाहिए।
2: लेकिन कई बार होता है, कुछ फुट के साइजेस ऐसे होते हैं कि वो एग्जैक्ट साइज़ मिलता नहीं है, तो उसके लिए कई बार सोल लगा के या पीछे लगा के तो उसको एडजस्ट कर दिया जाता है।
1: हाँ, ये गलती हम बहुत करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा लूज़ शूज़ ले लेंगे और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सॉल पतावा डाल देंगे, तो जो कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक्स्ट्रा पतावा डालने से क्या होता है कि हमें हमारा प्रेशर चेंज हो जाता है, जो हमारी हील पे प्रेशर आना चाहिए था वो हमारी टोज़ की तरफ आ जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं नी पे इम्पैक्ट काफ़ी ढीलने को मिलता है या लोअर बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हमें टॉलरेट करनी पड़ती है। तो ऐसा ना करें, तो जितना कोशिश हो सकता है कि अपने ही साइज़ का, या अगर आपको फुट में आगे पंजे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक नंबर बड़ा शूज़ ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो अपने साइज़ का कोई भी मोची से फुटवेयर डिज़ाइन करवा सकते हैं सेम साइज़ में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर के हिसाब से शूज़ नहीं मिल पाता है। जी,
2: तब की ये होगा कि हम शूज़ अगर हम पहन रहे हैं तो हम ये सोचेंगे नहीं कि शूज़ की वजह से हमारी नी में पेन आ रहा है।
1: हाँ, ये नहीं सोच पाते हैं हम।
2: हम सोचेंगे अगर शूज़ में प्रॉब्लम है तो नीचे फुट में प्रॉब्लम आएगी, नीस तक तो हम सोचेंगे भी
1: नहीं सोचते हैं बिल्कुल। अगर ऐसा हो भी रहा है कि अगर हमारे साइज़ का शूज़ नहीं मिल रहा है, या तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर, अपने पोडाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन करो, हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इससे भी हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब पैरों के दर्द का व्यक्ति के बॉडी वेट से क्या संबंध है, क्या ज़्यादा वेट वालों को पैरों की समस्या ज़्यादा होती है। नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड।
1: ये हाँ, गुड आफ्टरनून सर, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग ये आके पूछते भी हैं। जी, कुछ केसेस में जी बिल्कुल वज़न बहुत मैटर करता है हमारी बॉडी का। अगर हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो हमारे पैरों पे दबाव उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना हमारे घुटने और कमर पे भी आएगा, जिससे कि हमारी वॉकिंग कम हो जाती है। जितना वॉक हम कम करते हैं हमारी मांसपेशियाँ भी वीक होने लगती हैं, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट हमारे पैर पर पड़ता है। तो हमें अपने बॉडी के वेट का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सकता है कम से कम हम अपना बॉडी का वेट, और जितना जल्दी कर सकें उतना बेहतर होता है।
2: नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, रविंद्र पाठक आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड, ये लिखते हैं, वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये लिखते हैं, मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा यहाँ नीदरलैंड में ट्रीटमेंट चला लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैंने इंडिया जाकर ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन ली एक साल बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा फिर स्किन ड्राई होकर ज़ख्म हो गए हैं, पेन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम दोबारा हो गई है, प्लीज़ बताने का कष्ट करें, वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
1: जी मैम, जो उन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ इंडिया में आके कराया, वैसे तो हम इंडिया वाले मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों का फिर से ध्यान नहीं रख रही हैं, अब उनको वही पैरों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ड्राई स्किन हो रही है उसको प्रॉपरली वो वॉश करें, उस पर लोशन लगाएं, है ना, और लोशन भी कई सारे टाइप के आते हैं, फिर उसको प्रॉपर वॉश करके कॉटन टॉवल से उसको ड्राई करें, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखें, तो प्रॉब्लम वो दोबारा नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है।
2: नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं मनीषा रांची से, ये लिखते हैं पैरों में जलन रहती है, क्या विटामिन B12 से फ़ायदा होगा?
1: हाँ बिल्कुल, विटामिन B12 और विटामिन B6 से पैरों की जलन को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना विटामिन B12 और विटामिन B6 का इतना रोल नहीं होगा पैरों की जलन में। आपको एक चीज़ करनी चाहिए, अपने पोडाइट्रिस्ट होते हैं फुट एंड एंकल के डॉक्टर जो स्पेशली फुट को देखते हैं, तो आप उनको कंसल्ट कीजिए और इस जलन के हिसाब से अपने आपको एक ऑर्थोसिस बनवाना चाहिए जिसके शूज़ के अंदर डाल के आप वॉक करें, तो पैरों की जलन उससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा।
2: नेक्स्ट मैसेज हमें लिखते हैं शैलेंद्र कुमार सुमन फ्रॉम बिहार, ये लिखते हैं हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सर, नमस्कार जी। आज लिखते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी माँ को लेफ्ट लेग हील पेन होता है, अब लेफ्ट राइट लेग में भी हील पेन होने लगा है, प्लीज़ एडवाइस, हील पेन की प्रॉब्लम है।
1: हाँ, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि हील पेन कई सारे टाइप के होते हैं, तो इनको हील पेन किस टाइप का है, और पहले एक में होता था फिर दूसरे लेग में होने लगा, तो वो पहले एक लेग में जब पेन आ रहा था तो उन्होंने अपने बॉडी का वेट दूसरे वाले लेग पे शिफ्ट कर लिया। अब एक लेग अपने लिमिटेड ही बॉडी वेट केयर कर सकता है, जब जो कैरी कर सकता है, अब ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे पैर पे बॉडी वेट आएगा तो ऑब्वियसली वो प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको जो हील में पेन आ रहा है वो प्लांटर फेसाइटिस का पेन आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली आप हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जितना हो सकता है, पैरों की अपनी काफ की स्ट्रेचिंग करें, एक्लिस टेंडन की स्ट्रेचिंग करें और गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करें, और एक कंफर्टेबल सॉफ्ट फुटवेयर पहने जो कि हम जिसमें पहन के हमें पेन कम हो, तो इसको हम इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हील पेन के केस में बहुत ज़्यादा मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होती है। जी
2: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं कॉमन फुट प्रॉब्लम्स पे, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा सा प्यारा सा गाना हमेशा बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग महसूस होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉमन फूड प्रॉब्लम्स की, तो एक मैसेज है हमारे पास, लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर
1: जी, मैं अमीन भाई, रेडियो वाला, सिरोही धोनी जिला गाजी।
0: हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है
1: मैं
0: आपका?
1: सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर्दियों में तो हाथ पैर फट जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी पैरों में दरारें आ जाती हैं, फट जाते हैं, इसका क्या कारण है?
2: हाँ ये बिल्कुल
1: रेडियो
2: सही
1: पर
2: का
1: बताएं सर, मैं रेडियो पर सुन रहा हूँ।
2: हाँ ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है। ऐसा होता है कि सर्दियों के टाइम में अक्सर हमारी एड़ियों में दरारें आ जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अक्सर सर्दियों में ठंडे पानी से अपने हाथ पैर ना धो के गर्म पानी से धोना पसंद करते हैं। तो हम ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो भी हमारी हील के लिए ठीक नहीं है, पैरों के लिए ठीक नहीं है, और हमारी वॉकिंग काफ़ी कम हो जाती है, हम चलना कम पसंद करते हैं सर्दियों में। इसके अलावा हमारा वाटर इनटेक जो सबसे ज़रूरी है वो हमारा कम हो जाता है। हम गर्म पानी से भी अपने पैर धोएं तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी पानी की कमी होगी तो फिर क्या है, बॉडी हमारी मसल्स से वाटर यूटिलाइज़ करने लगती है। तो सबसे पहले हमारी हील पे ही उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सारा बॉडी का वेट हमारे हील पे आया। अब हील पे बॉडी वेट आएगा तो वहीं से क्रैक स्टार्ट होना। अगर वो बॉडी वेट हमारा हाथ पे आया होता तो हमारे हाथ से वो क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती। तो ऐसा इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, पानी पिएं और गर्म पानी से अपना हील को या पैरों को वॉश ना करें, नॉर्मल पानी से वॉश करें। इसके अलावा आप उसको ठीक करने के लिए मॉइस्चराइजर्स का यूज़ कर सकते हो। आजकल तो मार्केट में वैसलीन या अदर चीज़ें भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो उनका यूज़ करें।
0: तो जैसे कि आपने बताया कि पैरों को वॉश करें, क्लीन रखें, ले और अगर हम बात करें फुट मसाज की, तो फुट मसाज कराना

0: के ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पैरों पे, वरना अदर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं या हमारी मसल्स थोड़ा वीक होने लगती हैं। तो हमें सुपरफिशियल मसल्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादा दबाव की ज़रूरत तब होती है जब आप 60 साल से ऊपर के हैं या 70 साल के पेशेंट्स हैं, तो आपके पैरों की मसल्स वीक हो गई हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा हाई कंप्रेशन चाहिए होता है पैरों की मसाज के लिए। जी
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, वेरिकोस वेंस के लिए क्या करना चाहिए, सर्जरी से प्रॉफिट होगा क्या? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
0: जी वेरिकोज वेंस आजकल बहुत बड़ा एक इशूज़ है। लोग काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं और कम उम्र में सफ़र कर रहे हैं। पहले हम देखते थे या पढ़ते थे कि 60 साल या 50 साल के ऊपर के पर्सन को ही वेरिकोज वेंस होती थी, लेकिन आजकल मैं 30 साल में, इवन 25 साल में भी काफ़ी काफ़ी सीवियर वेरिकोज वेंस देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि आप सर्जरी कराओगे तो दोबारा फिर हो सकती है, या फिर आप अगर आपके डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये दोबारा नहीं होगी, तो आप करा सकते हो। अदरवाइज़ के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हो टू इंक्रीज़ द ब्लड फ्लो, जो हमारे पैरों से ब्लड इंक्रीज़ होके हार्ट की तरफ तेज़ी से जाएगा, इन्फ्लाम जो सूजन होती है पैरों में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।

0: है कि हमें हील्स को जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। अगर हील्स आपको पहननी हुई है तो 1 इंची की हील्स सफिशेंट है, और वो आइडियली भी है कि 19 मिलीमीटर या हम 2 सेंटीमीटर तक का पीछे से हील हाइट वाला शूज़ या सैंडल पहन सकते हैं। ये हमारी बॉडी के बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये लिखित में है।
1: अच्छा,
0: जी
1: जैसे कि आपने अभी टोज की भी बात करी, तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है इनग्रोइंग टोनेल,
0: जी
1: तो ये क्या है? और
0: ये प्रॉब्लम तो मैम, ये मैं ये कह सकता हूँ कि 70% गर्ल्स इस प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, नॉट बॉयज़।
1: तो क्या वजह है इसकी?
0: तो उसकी वजह हमारे फुटवेयर्स हैं। गर्ल्स क्या करती हैं, फ्लैट बेलीज या पॉइंटेड बेलीज ज़्यादा पहनती हैं, जिसकी वजह से हमारे नेल इनग्रो होते हैं और वो हमारी स्किन में ही अंदर की तरफ ग्रो होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। या

0: वहां से उसके केसेस काफी बढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर किसी को इन ग्रोइंग टोनेल की प्रॉब्लम है तो वो अपने पोडाइट्रिस्ट या अपने स्किन के डॉक्टर को कंसल्ट करें उसको निकलवाने के लिए, ना कि खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करने में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये मेरा इन पेशेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी पहले बोला था, अभी बात करते करते, एकिलियस टेंडन, तो
0: जी,
1: ये समस्या क्या है?
0: एक्लियस टेंडन भी एक ये काफ़ी ऐसा पेन है कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, और ये पेन के सिम्टम्स ही हमें ऑब्जर्व कराते हैं कि ये पेन जो है वो एक्लियस टेंडन का है या किसी और चीज़ का है।
1: क्या सिम्टम्स है और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
0: इस में एक्लियस टेंडन में हमेशा जो पेन आएगा वो वॉकिंग में आएगा, और एड़ी के पीछे दर्द आता है, जो हमारे एड़ी के पीछे वाला जो टेंडन होता है वहाँ पेन आएगा। जब भी हम चलेंगे हमें पेन महसूस होगा, सिटिंग बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, हमें कोई दर्द नहीं आएगा। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि जितना ऐसे केसेस में, बिल्कुल ऐसे केसेस में हम हील वाला शूज़ हमें पहनना चाहिए, तो हमें टेंडन का फ्रिक्शन हम कम कर सकते हैं, उसका खिंचाव कम कर सकते हैं, उसको ठीक होने के लिए हमें टाइम मिल जाता है, तो आराम से हम ठीक कर सकते हैं उसको। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हील पेन की, पर लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग कई कई साल से इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं।
1: इसलिए हमें अपना शूज हो गए चाहे हील्स हो गए, बहुत देख के चूज करना चाहिए और कैरी करना
0: जी जी
1: चाहिए।
0: जी पर ये बहुत छोटा सा पार्ट है, लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी परचेज करो और चलो
1: फैशन
0: फैशन। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि एड़ी की हम बात कर रहे थे, तो एड़ियाँ जैसे विंटर्स आती हैं या मौसम बदलते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं? फिर हम क्रीम लगाते रहते हैं, नहीं होती कई बार हील।
0: अभी हमने वही बताया जो अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं,
1: जी
0: तो मैंने उनको बताया था कि हमारा ऐसा इसलिए होता है कि जितना हो सकता है पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, पर हमारी बॉडी को तो वाटर चाहिए, तो हमारी मसल से इनटेक लेने लगते हैं, और जब मसल से पानी जाएगा और हमारी हील पे ज़्यादा प्रेशर आता है तो वहाँ से क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में विटामिन B12, विटामिन B6 लें, और पानी का भरपूर मात्रा में, और ये ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गर्म पानी का यूज़ ना करें उसको वॉश करने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी का यूज़ करते हैं कि हम एड़ियों को साफ़ कर लें,
1: जी,
0: है
1: सॉफ्ट
0: ना,
1: रहेंगी।
0: बिल्कुल, तो वो गलती ना करें। आप नॉर्मल वाटर लें, उससे क्लीन करें, और जो कॉटन टॉवल होती है उससे उसका ध्यान रखें, फिर उस पर लोशन अप्लाई कर सकते हैं आप।
1: तो कई बार कहते हैं फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है पैरों में, तो क्या उसके
0: हाँ,
1: लिए भी सेम केयर है या डिफरेंट है?
0: नहीं नहीं मैम, उसके लिए डिफरेंट केयर है, फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस अलग होते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन तब
1: वो किस
0: होता,
1: वजह से हो जाता है?
0: फंगल इन्फेक्शन तब हो जाता है कि हम अपने पैरों का ध्यान नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग होती है जिन लोगों को, और वो ध्यान नहीं रखते हैं, या हम किसी के फैमिली मेम्बर में किसी और का हमने शूज़ या सॉक्स पहन लेते हैं, है ना, हमारी बहुत वॉकिंग होती है या हमारा बहुत टाइट फुटवेयर है, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं अक्सर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना ही शूज़ या सॉक्स पहनने चाहिए, और वो भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन। इसके अलावा हमें अपने, अगर किसी को ये स्वेटनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उसको डेली बेसिस पे सॉक्स चेंज करने चाहिए, और बीच बीच में निकाल के अपने पैरों को हवा लगानी चाहिए, सो दैट कि वो स्वेटनिंग जो होती है उसको प्रॉपर वो ड्राई कर सके।
1: कई बार होता है जो लोग वर्किंग है, या तो उनका काफ़ी देर तक बैठने का काम है या फिर काफ़ी लंबा चलने का काम है,
0: जी
1: तो वो अपनी फुट केयर कैसे करें?
0: हाँ, ये भी एक क्वेश्चन
1: जो
0: है।
1: बैठे हैं तो उनका वॉकिंग नहीं हो पा रही, और जो चल रहे हैं उनको

0: नहीं मिल पा रहा।
1: हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिन लोगों की लॉन्ग सेटिंग होती है उन लोगों को अक्सर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और या पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे केसेस में लॉन्ग सेटिंग को अवॉइड करें। बीच में अगर जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप भले ही 2 मिनट के लिए थोड़ा वॉक करके दोबारा आके बैठ जाइए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पैरों के लिए। या आपकी लॉन्ग सिटिंग है, आप नहीं उठ सकते हैं, तो सामने कोई भी छोटा स्टूल रख के उसके ऊपर अपने पैर रख के बैठ सकते हैं, सो दैट कि आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रह सके। सेम थिंग वॉकिंग वालों के लिए, वॉकिंग वालों के लिए थोड़ा बल्कि ईजी हो जाता है, क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं। सिर्फ वो वॉकिंग में क्या उनकी मसल्स यूज़ हो रही है, पर मसल्स तो एक्टिव हैं, वो वीक नहीं होगी। सिटिंग में हमारी मसल्स बैठे बैठे वीक हो जाती है, तो इसलिए वॉकिंग वालों को बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और वॉकिंग के केस में मसाज कराना, अभी आपने पूछा था मसाज
0: हाँ,
1: कराना चाहिए, वो 10 से 15 मिनट की मसाज ले सकते हैं, हेल्दी मसाज, जिसे हम अपना मस्टर्ड ऑयल जो सरसों के तेल के वजह से मसाज करा सकते हैं। जी
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें तो अगर किसी के अगर पैरों में दर्द है और वो कहीं बाहर है या कुछ है, तो उसके लिए केयर कैसे करें? अगर पैर अकड़ जाते हैं, कई बार क्रैम्प आ जाता है।
1: हाँ, मसल्स क्रैम एक आम समस्या है, आप कभी भी देखेंगे, तब होता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से, या हमारी बॉडी में काफ़ी वीकनेस होगी उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि नस में नस चढ़ गई है,
0: जी
1: है ना। ये बहुत कॉमन है और ये अक्सर होता है सोते हुए, या हम बैठे हैं तो एकदम बैठ के उठते हैं, वो तब होता है। तो ये पानी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है, जितना हम हो सकता है पानी पिएं और उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, और सॉल्टेड वाटर पीने की ज़रूरत है।
0: इसी से रिलेटेड एक मैसेज भी है हमारे पास, शायद उनको भी जवाब मिल गया होगा। ये लिखते हैं, आई एम 73 ईयर्स ओल्ड एंड डायबिटिक विद गुड कंट्रोल, आई हैव क्रैम्प ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू, स्मिता नागर। तुम हाँ, जवाब इनको मिल गया होगा,
1: इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो हमने कॉमन फूड प्रॉब्लम्स के बारे में कि कैसी कैसी प्रॉब्लम हो जाती है और क्या क्या सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, क्या कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं कि जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं, कई बार चलते चलते हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, वॉक करते रहते हैं, तो उस केसेस में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। कई बार हमारे प्रेशर ओवर प्रेशर हमारी टोस पे आ जाता है, तो हमारे नील्स ब्लूइश होने लगते हैं, तो भी हम उन केसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे हील में पेन, एक्यूट पेन आ गया है, आप वेट नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी नी में पेन आ गया है, या आपके फोरफुट में पेन आ गया है, तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। आप इन सब सिम्टम्स को अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके शेयर करें, कंसल्ट करें, और इनको जितना हो सकता है जल्दी अवॉइड करें, क्योंकि फूड की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जितना आप इग्नोर करोगे उतनी ही बड़ी होती जाती है, और उसको बाद में ट्रीट करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है।
0: कुछ ऐसी फुट एक्सरसाइज या फुट केयर डेली रूटीन है जो मैं अपने पैरों को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि उसी पर हमारा पूरा शरीर का वेट रहता है, हमें डेली में करनी चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, हमें डेली में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि हमारे पोस्चर को काफ़ी हद तक बेहतर रखती है। अगर हमारा पोस्चर ठीक है, फुट की मसल की स्ट्रेंथ ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमारा बॉडी बैलेंस ठीक हो जाता है। तो बेसिकली हमें योगा भी करना चाहिए, लेकिन योगा करें या ना करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, जो कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है।
0: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा स्वस्थ पैरों के लिए फुट केयर फॉर्मूला है क्या?
1: नहीं मैम, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सब लोग ज़्यादातर ध्यान रखते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, पहले लोग इतना केयर नहीं करते थे पैरों की, लेकिन अब करते हैं। तो लेकिन यही है कि आप ज़रूर अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा वॉक करें और एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वॉकिंग ही हमारी मसल्स को एक्टिवेट रखती है।
0: पानी पीना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं पानी पीना हमारे फेस पे ग्लो लाएगा, लेकिन हम पैरों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हम नहीं सोचेंगे।
1: जी जी बिल्कुल।
0: श्रोताओं, पैरों की छोटी सी तकलीफ को छोटा समझकर टालिए मत, क्योंकि हमारे हर सफ़र की शुरुआत इन्हीं कदमों से होती है। इसलिए पैरों में होने वाले दर्द, सूजन या किसी भी बदलाव को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। सही जूते चुनें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और परेशानी लगातार बनी रहे तो विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कदम स्वस्थ होंगे तभी जिंदगी का सफ़र भी सहज और खूबसूरत होगा। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत आभार मैम।
0: दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, अपने पैरों का रखें थोड़ा ध्यान, थोड़ी देखभाल और बढ़ते रहिए बेफिक्र अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, लीजिए पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत भारत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत भारत स्टेशनों का आज उद्घाटन किया। भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन की यात्रा पर हैं। श्री शाह पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना है। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 75 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजारापू अचनाइडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्लूक्लोर वर्जीनिया एफसीवी तंबाकू की खरीद की प्रगति की समीक्षा की। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएगी। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गिलगित बल्तिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ।

में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता, प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ आपके लिए अल्फा जैन। अल्फा जैन में आज क्या खास होने वाला है, किसके बारे में आपको देने वाली हूँ मैं बहुत सारे टिप्स और बातें करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपकी रेनी सीजन जो है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली है। और वो क्यों जाने वाली है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारा प्रोग्राम होने वाला है कि स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे, और आप लम्हे सुनिए, उसके बाद आपसे होगी फिर से मुलाकात। कहाँ, यहीं 102.6 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू भी।

0: हेलो माय डियर फ्रेंड्स,
1: वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया लेकर। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद, एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा, अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है? क्या आप बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी, दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डटकर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है। छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति, मान्यता, परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स

से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वे अपने पूरे परिवार यह तक के दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। ये नैतिक गुण ही जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ कारणों से अपने बच्चों को कुछ चीजों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक उनको कोई नए टॉयस और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लर्न है। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रॉम योर आरजे चेतन। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मस्त मलंग आरजी श्वेता आपके साथ। प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ अल्फा जैन, जहाँ पर होने वाली है ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी बात। आने वाला है रेनी सीजन, लेकिन अभी अभी समर सीजन गया कहाँ है, जाने का तो

काम ही नहीं ले रहा है, और वहीं गर्मी में हम तो पसीने पसीने हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आज हमने सुना था प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में, अपने पैरों का ध्यान रखना, तो बस उन्हीं पैरों को आगे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं रेनी सीजन में भी, और फिलहाल जो समर सीजन चल रहा है उसमें भी, यही बताने आई हूँ मैं भी आज आपको। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया हुआ है वह दिल्ली और NCR में, और उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू भी।

यहाँ बच के रहना होगा, लेकिन किस तरह से और कहाँ पर कैसे बच के रहना होगा वो सारी जानकारी देने आई हूँ। और जनाबे आली, आपके लिए चांद तारे तो क्या, हम इतनी ऐसी ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ हो जाती है काफी स्मूथ और बहुत ही अच्छी। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आखिर 2026 में नए ट्रेंड्स में अगर शूज की बात करें तो कौन सा स्टाइल चल रहा है, क्या आपके लिए कंफर्ट जोन रहेगा, और परफॉर्मेंस की भी बात करें तो बस ये परफेक्ट शो है आपके लिए। सुनने और आराम से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम में ना जूते सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, मानते हैं ना ये बात आप भी? तो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफिस प्रोफेशनल हो या फिर फिटनेस लवर, हर किसी के लिए सही जूते चुनना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। और 2026 की बात करूँ ना तो नए ट्रेंड्स देखने को तो मिल ही रहे हैं जिनमें स्टाइल है, उसके साथ साथ आपको कंफर्ट भी मिल रहा है और टेक्नोलॉजी पर तो खास ख्याल दिया गया है। अच्छा अब मैं जानती हूँ हमारे जितने लिसनर्स हैं ना वो सोचेंगे श्वेता को लेकर आई होगी, बस फीमेल्स के लिए बातें करने आई होगी ना कि कौन सी स्टाइलिश हम लोग जूतियाँ पहनेंगी या हील्स पहनेंगी। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जनाब, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके लिए भी स्पेशल है यहाँ पर कुछ। और हाँ जी सर, आप जो जिम जाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं, आपके लिए भी बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। एक बार ही सुनने, मतलब बस सुनिए तो सही, ठीक है? अगर नहीं सही लगा तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो में सुनना, फिर उसमें और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। बस सुनना तो जरूरी है, सुनने से जानकारी आपको और मिल जाएगी। सुनते रहिए, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

आप सुन रहे प्रोग्राम मस्त मरंग श्वेता के साथ है। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है ये आप जानते ही है ना, अल्फा जैन चल रहा है। और अल्फा जैन में आज है, ओ माय गॉड, आज है फ्राइडे। और फ्राइडे में आपके साथ कितनी सारी बातें करनी होती हैं हम लोगों को, पता है बहुत सारी बातें करनी होती है। चलिए आपको जल्दी से बता देती हूँ कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग शूज़ कौन से चल रहे हैं, जिसके लिए अगर आप अभी भी जाकर अगर आप मार्केट जाना चाहते हैं और शूज़ लेना चाहते हैं, कुछ ट्रेंडी देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि वो कम्फर्टेबल भी रहे, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। आज के टाइम में ना स्नीकर सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं सभी, ये एक ऐसा फेवरेट फुटवेयर बन चुका है ना सबके लिए। ना सिर्फ आरामदायक होते हैं बल्कि हर तरह की आउटफिट के साथ मैच भी हो जाते हैं। इमेजिन साड़ी के साथ भी आराम से सभी लेडीज स्नीकर्स भी पहन रही हैं।

एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, इट्स फ्राइडे. और ये जो फ्राइडे होता है ना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है. इन्फोटेनमेंट का खजाना है ये आज का प्रोग्राम. क्यों? इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है गानों के जरिए. तो बस इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए. वाइट स्नीकर्स की मैं अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ ना, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स में है. वाइट स्नीकर्स हर किसी के साथ एकदम ऐसे जेल हो जाते हैं ना, जैसे पानी में दूध मिल जाता है या दूध में पानी मिल जाता है. हाई टॉप स्नीकर्स की बात करूं तो ये यूथ में बहुत ज्यादा फेमस है. और रेट्रो डिजाइन फिर से वापसी कर चुके हैं. रेट्रो डिजाइन देखेंगे ना अगर आप मार्केट में, आप सोचेंगे अरे वाह क्या बात है, ये तो डिस्को लाइट्स ज्यादा लग रही हैं. इसी तरह से और भी बहुत सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग शूज हैं जिनके बारे में आज आपके साथ बात कर रही हूँ. अब बताइए सर, सही सही बता रही हूँ ना मैं, है ना? लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं है हमारे शो में बिल्कुल भी. स्मार्ट शूज की बात करने वाली हूँ इस गाने के उस पार. बस मेरी ये बातें आप ध्यान से सुनते रहिए, जुड़े रहिए फिर रेनबो के साथ.

0: अभी और भी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार होंगी ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

इतना अच्छा होना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच शूज जो है हमारे पास आराम से रहें, और सभी के सभी ना हमारे लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली रहें और हमारे पैरों के लिए अच्छे रहें। स्मार्ट शूज की बात करूं, अब मैंने कहा था ना टेक्नोलॉजी जूतों में भी आ चुकी है, तो स्मार्ट शूज आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे स्टेप काउंट्स, कैलोरी बर्न्स, रनिंग एनालिसिस। ये जूते खासकर फिटनेस लवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखा, कहा था ना मैंने आपके लिए, जिम जा रहे हो आपके लिए भी टिप है। तो बस अब आप भी अपने लिए ऐसे शूज पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो। इससे क्या फायदा होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाले हैं। आप जैसे करते हैं ना घड़ी में देखते हैं कि कितने स्टेप काउंट्स हो गए हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको स्पेशली, कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में हम घड़ी पहनना भूल जाते हैं या स्मार्ट वॉच पहनना भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आपके शूज अपने आप आपके स्टेप्स काउंट कर लेंगे, कैलोरी बर्न्स भी, और इसके साथ साथ रनिंग एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि किस तरह से आप रन करते हैं और फिर वो शूज आपके लिए कैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, कैसा हो अगर ऐसे शूज मिल जाए जो सस्टेनेबल भी हो, इको फ्रेंडली भी हो, है ना, कितना अच्छा रहेगा ना। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब लोग ऐसे जूते भी पसंद कर रहे हैं और ऐसे जूते मिल भी रहे हैं जो रिसाइकल मटेरियल से बने हों, जिनमें ऑर्गेनिक फैब्रिक्स हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ होता है, और ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे फ्यूचर में ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। वैसे इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ती हूँ कि प्लास्टिक वेस्ट से बने कुछ जूते भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अब ये देखना ज़रूरी है कि जो प्लास्टिक वेस्ट से जो हमें शूज़ मिल रहे हैं वो हमारे पैरों के लिए कितने अच्छे हैं। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर वो हमारे पैरों के लिए अच्छे हैं, उसमें हवा आ रही है जा रही है, क्योंकि हमारे पैर भी तो सांस लेते हैं ना बेचारे, नहीं तो गर्मी में अपना जब पसीने होंगे तो फिर स्मेल करेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। अगले शूज की बात करूं, स्लिप ऑन शूज। अगर आप जल्दी में रहते हैं तो स्लिप ऑन शूज आपके लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, बिना लेस के पहने और उतारने में आसान, ट्रेवल और डेली यूज के लिए तो ओ हो, बस ऐसा लगेगा जैसे बल्ले बल्ले हो गई है। तो आप भी ये सारे शूज़ ट्राई कर सकते हैं, मार्केट में जाइए, क्या ट्रेंडिंग शूज़ और सैंडल्स मिल रहे हैं ये देखने के लिए तो थोड़ा सा मार्केट भी जाना ज़रूरी है। फिर आपके पसंद के अपने कलर्स, आपकी पसंद के अपने स्टाइल, और जो कंफर्टेबल चीज़ें हैं वो देखना सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी तो बोले जाएगा बल्ले बल्ले। सही में शूज ऐसे होने चाहिए कि कहीं पे भी बोले ना तो डांस करना, बस

ऐसे बाएं हाथ का खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो हील्स पहनी भी हो, चाहे वो शूज अपने आराम से नॉर्मल शूज पहने हो, स्पोर्ट्स या रनिंग शूज हो, कस्टमाइज शूज हो, स्लिप ऑन शूज हो, सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली शूज हो या स्मार्ट शूज हो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल स्टाइल में रहने का, और स्टाइल में जब आप रहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर शूज उनकी बारी भी जरूर आनी चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि स्पोर्ट्स और रनिंग शूज की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स और रनिंग शूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जब हमें स्कूल जाना होता है, अपने बच्चों के साथ जाना होता है, या फिर अपने लिए भी फिटनेस के टाइम पर आप कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं ऑफिस के टाइम के बाद, या फिर सैटरडे संडे, या जो अगर हमारे यूथ की बारे में बात करूँ तो वो तो देखिए हर रोज़ अपना इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं, तो उनकी जो रनिंग और ये खेल ऐसे ही हो जाता है। तो स्पोर्ट्स और रनिंग शूज़ की बात करूँ तो फिटनेस ट्रेंड के कारण, इसी वजह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शूज़ की डिमांड तेज़ी से बढ़ गई है, और इसमें पता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बेहतर कुशिंग मिल जाती है, शॉप जो शॉक होता है ना वो एब्जॉर्बर्स भी मिल जाते हैं, उसमें मजबूत ग्रिप मिलती है। तो ये जूते रनिंग, जिम और वर्कआउट के लिए तो अच्छे होते ही हैं, जर्नली भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है ये सब तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह से बनवाना है, थोड़ा इसमें ये चीज़ें हों, इसमें थोड़ी कुशिंग हो और पहनने और उतारने में इजी भी हो, काफ़ी सारी जो है मिक्स एंड मैच करके आप चीज़ें बनवाना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, आपके लिए भी

है ट्रेंड में बहुत सारी चीजें, कस्टमाइज शूज। हाँ जी, आप ही के लिए है वो आंटी जी, और आपके लिए भी है वो सर। मैम, आपके लिए तो ये परफेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग अपने जूतों को अपनी पसंद के अनुसार डिज़ाइन करवा रहे हैं। आप भी मैम, आप भी करवा रही है ना, तो ठीक है, नाम या फोटो प्रिंट आप अपने शूज़ पे करवा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा होगा ना, अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना है ना, तो क्या मस्त लगेगा, कितना अच्छा लगने वाला है। यूनिक कलर कॉम्बिनेशंस आप करवा सकते हैं जो आपको पसंद है, या अगर आपकी ड्रेस ऐसी है पर्टिकुलर उस कलर में, तो उसी कलर में आप उस यूनिक कलर कॉम्बिनेशन को बिल्कुल हाँ जी करवा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल स्टाइल भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी शूज में हील आप ज़्यादा लेना चाहते हैं या फिर कम लेना चाहते हैं, कुशनिंग हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, शॉक एब्जॉर्बर्स हो लेकिन थोड़े हल्के, ताकि आपको वो ऐसा ना लगे कि हाँ भैया अभी तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ अगर आप अपने शूज़ में कस्टमाइज करके करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। है ना कितना सही, एक ही जगह आपको ये देखिए इतनी सारी जानकारी मिल रही है ना, इंफरटेनमेंट का खजाना FM रेनबो, और वो भी उसमें मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि जूते खरीदते समय आखिर क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, और इसके अलावा अगर आपको जूते खरीदने हैं तो वो किस टाइम पे खरीदिए। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिलहाल जो है ना आपको ये बड़ा प्यारा सा गाना सुनवा रही हूँ, देखिए मन खुश हो जाएगा। इसका ना म्यूजिक ऐसा कि डांस करने का मन करता है एकदम, ऐसे ही ना बिल्कुल झूमना शुरू हो जाते हैं।

और ऐसी ही प्रीत ना हमें अपने शूज के साथ अपनी सैंडल्स के साथ हो जाती है। कितना एकदम मोह हो जाता है ना जब हम मार्केट जाते हैं और कोई सैंडल या शूज हमें पसंद आ जाता है, तो बस ऐसा लगता है कि यही हमारी लाइफ है। वैसे लाइफ तो है, क्योंकि सही शूज हमारी बॉडी पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे घुटनों के लिए भी अच्छा है, और बाकी पूरा का पूरा जो हमारा वजन है वो इन पैरों पे जाता है, और वो बेचारे पैर अगर उन्हें एक अच्छे से हम शूज या सैंडल्स दे देना तो बात ही क्या है। अब बताती हूँ आपको कि जूते खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। सबसे पहला, सही साइज आपको अगर शूज का चुने तो ही बेहतर है। हमेशा अपने पैर के साइज के मुताबिक ही जूते खरीदें। गलत साइज से पैरों में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अच्छा नहीं नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, और सामने दुकान वाले भैया बोल देते हैं मैम यही वाला साइज है, अभी दूसरा साइज नहीं है, और आपको लगता है चल ठीक है ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, हाँ छोटा ही तो है थोड़ा सा, आगे भले ही वो अंगूठा बेचारा ऐसे यूं मुड़ जाए, उसकी गर्दन यूं ऐसे टेढ़ी सी हो जाए, लेकिन नहीं जी हमें तो ये शूज़ लेना ही है। तो प्लीज़ इतना मोह मत रखना, अपने पैरों के शूज़ का साइज़ एकदम सही लीजिएगा। कंफर्ट को हमेशा आप प्राथमिकता दें, स्टाइल के चक्कर में कंफर्ट को नज़रअंदाज ना करें, और कुशनिंग और सॉफ्ट सोल वाले जूते होते हैं या सैंडल्स होती हैं वो ज़्यादा आरामदायक होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब आप दुकान पे जाएं तो 5-10 मिनट उन शूज़ को पहन के वहाँ चलिए ना आराम से, बाकी के शूज़ को भी देखिए, सैंडल्स देखिए, ज़रा पूरी दुकान देख लीजिए उसकी, वो पहन कर ही वहीं पर आपकी चेकिंग भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो आपने सैंडल लिए या शूज़ लिए हैं, फुटवेयर जो लिया है, ये बिल्कुल आपके पैरों के लिए एकदम सही है। अच्छा, अब हर काम के लिए अलग अलग जूते ज़रूरी हैं, जैसे रनिंग के लिए रनिंग शूज़ हैं, ऑफिस के लिए फॉर्मल शूज़ हैं, पार्टी के लिए स्टाइलिश शूज़ हैं। तो ऐसा ना हो कि आप एक ही शूज़ को सब जगह बस पहन के जाए जा रहे हैं। हाँ अगर मजबूरी है वो तो एक अलग बात हो जाती है। मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल में बहुत ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी है मटेरियल तय करता है। अब जैसे मेश होता है, मेश हल्का और सांस लेने वाला ये एक मटेरियल होता है। सिंथेटिक की बात करूँ तो ये बजट फ्रेंडली होता है, लेकिन बाकी और चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी है। लेदर की बात करें तो टिकाऊ और स्टाइलिश होता है, लेकिन बरसात में इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इवन अगर आपके पैरों में पसीने ज़्यादा आते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। वैसे एक बात बताऊँ, जो हमारे पुष्पा महाराज थे ना, उनका भी स्टाइल एकदम गजब था, है ना। कैसे उनकी स्लीपर का जब निकल जाते हैं पैर से, लेकिन उसके बावजूद वो क्या स्टाइल से डांस करते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। सुनते रहिए और जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। आपको बस यही परी मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि भाई अगला प्रोग्राम भी तो आने वाला है ना। अगला प्रोग्राम कौन लेके आने वाली है? शाली भाषांजलि, और प्रोग्राम होने वाला है सिटी लाइट्स। वहाँ आपको जानकारी मिलने वाली है दिल्ली NCR में कहाँ क्या हो रहा है और क्या क्या जानकारियाँ देंगी, वो जानने के लिए आपको उन्हें सुनना पड़ेगा। अच्छा एक लास्ट टिप दे जाती हूँ, जब भी जूतों की या फुटवेयर्स की खरीदारी करें तो दोपहर में करें। क्यों दोपहर में? इसलिए क्योंकि आप पूरे दिन चलते हैं तो उसके बाद दोपहर तक पैर हल्के से सूज जाते हैं, और इसीलिए सैंडल हमेशा दोपहर या शाम के समय खरीदनी चाहिए, जिससे आप एकदम सटीक आपकी फिटिंग मिल सके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता

0: ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ইমানপৰে শ্ৰোতাসকলে উইলকিছ এনামাৰো সংগীবৃন্দৰ কণ্ঠত জিকিৰ শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম, প্ৰৱাচকঃ কৃষ্ণপ্ৰসাদোপাধ্যায়ঃ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेलयानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्। 14,000 कोटिरूप्यकाणां विविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्। DGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज्जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचलप्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा राज्यानाञ्च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका PV सिन्धुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणाराज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वजप्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनया सह 14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम्। प्रधानमन्त्री 57,500 किलोमीटरपरिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीयरेलविभागे विगत द्वादशवर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
2: भविष्य में जब भी

0: 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছত 8:45 সামাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारम्भ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली

0: ली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।

0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Kent under the Amrit Bharat Station Scheme.

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant railway station. Union Minister of Railways and Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, and other dignitaries were also present on the occasion. Prime Minister Modi also inaugurated national highway projects, including a four-lane greenfield, Delhi-Amritsar-Katra Expressway, and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield, Southern Ludhiana Bypass. Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at the Jind railway station in Haryana. The launch marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, Indian Railways has undergone a major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.